0: कसै नि कागै तथा साहित्य मनगै नबो कारोनिन पेतु था ब्राने तर्गे तथा मनक थे सबरावे था सगोलिन के नीति मेल फुशोयंगा गतिप थम क्लॉक का सरथा नगति नगन थ सिने लको एक वयमे त चेकि थौनिन पेतु तरमराने के गोरनन वल्डन बोर
1: द वर्ल्ड दैट नेक्स्ट ईयर केन्या विल हैव ए फ्री फेयर वेरिफायबल election
2: and the political goonism is 1053 men and 136 female 1189 and this is also part of the evidence Mr. Speaker for people who say that the police are doing nothing to arrest goons
3: logo you have met in touch of him

ऐसा विषय नाम है चीजों का इथिल तिगत इग चिगे इथिल तिगत है वो चीजों तो मैं इथिल तिगत इलाबत हुई नून इथिल तिगत है तिगत नौ तो गने मीठे नंबर वन तिगत ने कितने लोगों ने मीठे नंबर अगेंगे चिल्गित चुंगों ने स्टार 274 आशे ताजे फैमिलों